भूत बन चार छित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सोभ जंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया तित गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंच की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जित बड़े ज्ञानी तिन जानी पर बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया के बखानिय। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदस फिरैया दे तो भूत के पछानिय। जल के तरैया को गंगेरी सीख हत जग आग के भजैया सो जगोर सम मानिय। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिय। नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब देन जारी रिखी के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जाम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गुड़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रखे रहियत है। विश्वपाल जगतकार

न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाय ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत क कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिरा।

सोई राजत रहीम होई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसेव सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पया नेको भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है।

जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फेर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उन को करत भच, केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केते नव बीज अच पच को करेंगे भज, के तक व्रत।

तेज जैसे तेज लीन ताहि तेउ बज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल मैं डुबत कित आग मैं जरत है कित गंग बाजी कित मदीना मकानी वाजी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम मैं गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान मैं उड़त कित जल मैं रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सी घस हारे चंदन लगाए हारे चोचार बूझ हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बच हारे पंडित

मंगन जन मंगन जातंग वैखंग वेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अविनाशी न जातंग न बातंग न रूपंग न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे कृते कृष्ण से कीट कोटे उपाय।

पंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सबूते भविखे भवान अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूजंग अभेकंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्प सर्पत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नियच्छयाद अद्वय अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय निर्विखादंग अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न गायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न वर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग।

कहूँ देह दोखं कहूँ ओ गति रोग के शोक शोकं कहूँ देव विजय कहूँ दैत बानी कहूँ जा छकंद्रव के नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हूँ कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हूँ कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जच विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे कहूँ शुद्ध से कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूप।

भाग्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शास्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेच भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारडू।

यगन होत्र कई पवन हार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साक पत्र बच नहीं तदब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहू वेद रीत जग याद करम कहू अगन होत्र कहू तीरथ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पड़ंत कई गलत भांत भांतन विचार नहीं नैकतास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत पीर विद्या विचार नहीं ददवतास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र दुचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदब तास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदब देश देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत।

ंगन गाधव्यादनादगतंगन खेद वेद छेद नरंग जे चार चतुर्देश चक्र फिरंग जय राग नरंग नरेख रुखंग जे सोग न भोग न जोग जुगंग भू मंजन गंजन आदि सरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंगर चे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध दो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे रही नैक कृपा नित पान पर जय फूकट धर्म सफेत जह एक चित कृपा नित को जप है तेउ या भव सागर को तरह भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति इम वेद उचारत सार सुते जो वारस के चस के रस।

रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अधोग दाग तक है, अभूत ब्रह्म वेक है, न तात माद जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेग से गेग है, सदीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेग विश्वभरण है, जिमे जमान के बिगे सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अवेक है, अलेख नाद जानी है, सदीव सर्व ठौर मैं विशेक आन मानी है, न जंत्र मै न तंत्र मै न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत के बतावई, न कर्म मै न धर्म मै न वरम मै बताइए, अगंज आद देव है कहो सु कैसे पाइये, जिमी जमान के बिगे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाट है, न घाट बाट होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन यो

अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, न शीत है, न सोज है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के

अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बली रूप राग रंग है, न द्वैक है न भेग, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है अनंत तेज जानी है, भूम अभिज है सदा छिज तेज मानी है, न आद है न व्याद है, अगाध रूप लेखी है, दोख है अदाग है, अक्षय प्रताप पेखी है, न कर्म है न परम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र।

न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा से दसपति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विषय किए, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ भी किए। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु संदेह जानिए। सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रहे, तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोध है। त्व प्रसाद रुआमल छंद रूप राग नारे।

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमका जले थले मै जपत जाप मंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञात।

दुर्जन दल दंडन सुरभ अंडन दुष्ट निकंदन आदि वृत्ते चरा सुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गते। अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते। जय जय हो सीम खासुर मर्दन रम कपर्दन छत्र छिते। आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप तेजंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र।

श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय उसी मय खासुरमर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुनि वंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रूप मारे अधम उदारे नरक निवारे आदि कथे किंकनी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय उसी सब ठार निवासन बाहे पताल आकाशन ले संकटे निवारण धम उदाहरण तेज प्रकार खण धुंध तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ गाद छे शुद्धता समर्पण दर्ग वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सत्र प्रकार खण आद नील गाद भे चंचला चखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामने दमंके के हरलंके आदतंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी

दुर्मर्दन चंड चक्रदन आदि पुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष और रोदन क्रूर प्रत्यय धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन।

दामने प्रकाश अंतरनाशे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रतर खंड पितल तले अष्टायत वाहन बोलने वाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय ओसी मै घासुर मर्दन आद नाद गाद प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गा हे दुख हरे गंजन गुमान्य अतुल प्रवान्य।

चराचर मारण नरक निवारण बद दो दारण एक बटे पापान विहंडन दुष प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे बद दो धारे मुंड मथे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन धूम्र विधुंसनाद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्द।

दुख दोग रहत जिह नेत नेत सब भेद कहत। कई उच नीच की नो बनाव सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरन सिवंत कई पलट सूर।

अखंड प्रचंड पारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाय सके पद मापद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करो कुरुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देवा देव खपे हंगमेव न भेव लख्यो भ्रमस्यो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव।

काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन देह विरक्त अगेह छह है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पदमा पतल है। रोगंते और सोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे। शत्रु अनेक चलावत गावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो करत।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामार के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया।

सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को निंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन कर निंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को पोकत है के वृद्धता की बासी है जो को हूं को जंत्र है के तेज हो को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बाद है के बुद्ध हूं के घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान

विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाइये न पार पार वार हमको पार जब की जत विचार तो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हलपी देव पूर्वी न पार पावे असत अनाश है देवन को देव महादेव हमको देव है निरंजन अभेवनाद अद्व अविनाशी है अंजन भीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के गोल के हंस निश सिंहा रोम हीरा सी हो सैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पल्लाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झोल के चंदा चंपासी चंदे रिकोट चांद नि चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी के लाद कमाऊ गढ़ कांसी पूरसी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमासी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्र गिर चांदनी सी चंदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग दार बकान सी बुलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भकरी कंधारी गोर का खरी कर दे।

0: जस नहीं होवेगा तेरी बहुत वड्डी निंदा होवेगी।
1: चाहत चातुर बन्य बिशर्मे,
0: तै बेशर्मा एक काम करके पुठे सीधे काम करके तू अपने आप नु चतुर सियाणा बनना चाहुंदा।
1: शीश निवावह
0: जिन ए ओ बाणी है जैस बाणी नु पढ़ के सुन करके लोक ए बाणी दे चरणा दे विच ए बाणी दे अगे नतमस्तक होंदे मथा टेकदे हन।
1: मत लख महात्म जिनको,
0: ते एदा बहुत वड्डी शुभ मत वाले महापुरुख जिहड़े हन ए बाणी दा महत्व एदा एदी महानता जानदे हन।
1: पालियो नीठ नीठ लख ईठ,
0: ते पालियो तैनू ना असी बहुत मेहनत मशक्कत करके तैनू बहुत वधिया तेरे लालन पालन करना कीता। ते तू हुण वड्डा हो करके साडी सेवा दा आ फल दे रहा, इन्ना टीठ इन्ना वड्डा बेईमान, तेरा बाप भी बेईमान सी क्योंकि खून प्यारियो। मैं बेनती पहला भी की के सियाने कहिंदे ना के कुछ नस्ल दे दोष जिहड़े ओ पीढ़ियां तक चलते हैं। माता जी ने कहा तेरा बाप भी बेईमान, उन्हें बेईमानी की। मैं सोचा के चलो के चलो बचपन तो तेनू वधिया सिखिया दवांगे, लेकिन तू भी बेईमान दा बेईमान निकलिया। क्योंकि कई बारी आपां वेखदे आं प्यारियो कई बच्चे कईआं दे अंदर जमांदरू देखो इस तरह की कृपा होंदी है। आपां वेखदे आं ओ बच्चे जिहड़े हन जिहड़ा उहनां नूं माहौल मिलदा अमलियां दा मिलदा गंदे बंदियां दा माहौल मिलदा, लेकिन ओहदे विच वी प्यारियो ओह बहुत उच्चे सुच्चे बन के निकलदे। जिस तरह ध्रुव भगत, ध्रुव भगत दे बाबत कहा जांदा महाराज ने वचन कीता कि जिस तरह के प्यारियो कल्लड़ दी वाड़ी दे विच गंदगी दे विच कमल दा फुल खिड़ जांदा, इस तरह पूरे दंतां दे विच प्यारियो ध्रुव भगत सब तो वड्डा भगत दा दे नूं दर्जा प्राप्त होया। कई एहो जे भी निखते हुंदे हन बेईमान हुंदे, इन्नी प्यारियो गुरबाणी दी सिख्या वधिया धार्मिक माहौल प्राप्त हुंदा फिर भी बच्चे जिहड़े बेईमान निकलदे। ते ओहदे विच आप जी देखो धीरमल कौन सी प्यारियो, गुरु पुत्र सी, गुरु घर दे विच इहदा जन्म होया। ते आ जिहड़ा है प्रथिया कौन सी, मेहरबान कौन सी, राम राय कौन सी, आ जिहड़ा आप जी देखो अजीत सिंह कौन सी, हठी सिंह कौन सी, गुरु घर दे विच रहे गुरु घर दा जिहड़ा गुरबाणी दा माहौल प्राप्त होया, लेकिन फिर भी प्यारियो अंदरली बिरती माड़ी है गंदी है। और रहन दे बावजूद भी प्यारियो काम देखो किहो जे पुठे

प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहा हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प

रहा जन पिता लोक सुतबंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संबाही ठाकुर काहे मन भव करिया ऊडे ऊड आवे सैको सातिस पाछे बचरे छरिया तन कवण खलावे कवण चुगावे मन मह सिमरन करिया।

कह चौपई सम सतरह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सुधि अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत सरी चरित

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख तेग जग मैं दउ चल राख आप मुहे और ना दलय तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान

का राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज छुए सकै न कोई सम सत्रह सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद।

हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साची साहिबा क्या नाही घर तेरे घर तां तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दियां ए वडियाइया कह नानक सुन हो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया दुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी सं

अंड जेर पूजा खान सित जा सोमित जाने नानका सराम राजनता नानक जंत पाए कैसे माले जबना।